हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध शाह
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAF सिंध की आवाज।
2: जी तकलीफ कुल्हन जे सूर नंधे वडे सूर खां परेशान आयो छा इलाज कराए कराए थकजी पिया आयो हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस एक आजमायल कोरस जेको जोड़न पुठन कुल्हन ऐं जिस्म जे हर किस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंध हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 0312-3401-287। खात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी जिंदगी।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: FM DAFM 88 Network Sindh ki Awaaz.
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकर तवां के मैदे जी तकलीफ, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

रही दुनिया में नाही सा मोहब्बत ऐ सचाई लबन ते मुर्का विखरल दिल में आबे आई चाहत जा चुंग वजायो दिल जी गाल करणी आ चुंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करणी आ कराची में कश्मीर की जरगा कानून जरताई सोहणी सिंध वासन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल कर प्रोग्राम दिल जी गाल सा गड आऊं आया आबिद चौहान अवां बुधी रहा हो GAFM 88 नेटवर्क प्रोग्राम में शामिल कंदासी खोरसारी शायरी अवां जो कानू खूबसूरत म्यूजिक

असां जो अमा सां गॾु साथ हूंदो हींअर खां राति 11 वॻे ताईं। लाइव कॉल कॉल वसीले अमा असां सां करे सघो था पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488। हा ईंदुसि प्यारा मां मोटी कुझु ॾींहं पहिरीं इंतज़ार त कर। हा ईंदुसि प्यारा मां मोटी कुझु ॾींहं पहिरीं इंतज़ार त कर। मां वेंदुसि तोखे साण वठी मुंहिंजे वाइदे ते एतबार त कर।

इंतजार त कर मामू दोस्तो के साण वठी मुझे वायदे ते एतबार त कर छो लबड़न ते लालाण न थी छो एडो गुमसुम थी पियो मां छो लबड़न ते लालाण न थी छो एडो गुमसुम थी पियो मां का मुर्क खिंडेरे चेहरे ते तू उल्फत जो इज़हार त कर।

त वू अखियूं महसूस कंदे मां साजन तुंहिंजे साम्हूं आ, तू बूट अखियूं महसूस कंदे मां साजन तुंहिंजे साम्हूं आ, तू खोले दरी पंहिंजे दिल जी ऐं दिलबर जो दीदार त कर, हा ईंदुसि प्यारा मां मोटी कुझु ॾींहं पिरी इंतज़ार त कर। छो लबड़नि ते लालाण न थी, छो एॾो गुमसुम थी पियो आहे, छो लबड़नि ते लालाण न थी, छो एॾो गुमसुम थी पियो आहे, का मुर्क खंडेरे चहिरे ते तूं उल्फत जो इज़हार त कर, हा ईंदुसि प्यारा मां मोटी कुझु ॾींहं पिरी इंतज़ार त कर। कीअं तन्हा तोबनि यार जीआं, कीअं ज़हर जुदाई जो मापियां, कीअं तन्हा तोबनि यार जीआं, कीअं ज़हर जुदाई जो मापियां, रखी पाण खे आबिद जी जा ते मुंहिंजी ज़िंदगी ते वीचार त कर, हा ईंदुसि प्यारा मां मोटी।

0: जी तो दोस्तों प्रणाम दिलदीवाल भाई रोमांटिक प्यारो गीत जलाल सानिया जी आवाज
1: खा कर पीछे मत कर बाहर आयो से पढ़ तो ही बिस्मिल्लाह वाली ओ मुखता पीछे मस महबूब दिधाक ते आयो से
2: कहतो मां इतरा सदमा सही तो महबूब जी धाक दे तो तुम तुम बक्ता फकीर कुछ तक सदमा खा घड़े गलाए पे महबूब ने पे गलाए तुम्हारी महबूब के दिसी घड़े वाली पचर छी फकीरानी महबूब सा पे गलाए छा पे चेस

0: तकलीफ़ रतु अचणु सख़्तु सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहा आयो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
3: जी हा, 2311-5525-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

दोस्तों असो लाइव कॉलिंग नंबर है 03000 11 34 88 अवी कॉल रिसीव कदे इन खूबसूरत ट्रैक कंपोज़।